그 그룹별을 हर वीरवार अपना शाम चार तो छे इनाम सिमन अभ्यास का समा हुंदा है। शनिवार भी चार तो छे, ऐतवार भी चार तो छे, तीन दिन हफ्ते दे विच आया करो जिन्ना को समा। वीरवार नूं ते ऐतवार नूं दीवान हाल च ही मिल जाता, शनिवार कई बार उपर स्कूल वाले कमरे च हुंदे। सो ये चार तो छे समा है अज का, इन्ना ही समा सतगुरु बख्शिश कर, अनेक भुला हो जाए ने। गुरु ते संगत बख्शन योग बख्श लेना हुण पाम रहरा साहब दे जाप पाठ सरवण करो जी, होइयां भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा।

हर पुरख निरंजन हरगम अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी।

रंक पयो राव कहि पुप्पा, अंडज जेरज सेतज किन्नी, उतभुज खान बहुर रच दिन्नी, कहूँ फूल राजा हब बैठा, कहूँ सिमट पयो संग्रह कैठा, सगरी सृष्टि खाए अचंभव, आजुगाद स्वरूप स्यंभव, अवर्छा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सगल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐ है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्टतन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा शबा सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा।

ना जान मुझे प्रत प्रिया, चुन चुन शत्रु हमारे मरिया, देख देव जग में दहू चल, राखा मय और ना दल। तुम मम करो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा, जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन की राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दा जान कर कृपा कर मोहे, हार परम्यान द्वार तोहे। अपना जान करो व्रत पारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा, दा जान द हाथ उबारो, हमरे सबैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहुर करो कविता विदनाना, किशन जथा मच रतरो चारो।

आस गोविंदास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां

अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

इतनी सेवा प्रदान कर लीजिए, कीर्तन कर दे आप अल्लाह की माफी बख्शन भाई सुंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप जी ने पुत्र बाणी लड़ीवार कथा विचार रहे जोड़न गए उन्होंने पासों प्यार से सरन।

सत्संगत ना ही नवाक करना है, नेरा ना ही दूर, दूर नहीं है वैगुरु। इस वास्ते इस शब्द नु पढ़ना है नेरा, सो प्रभ नेरा है ते नेरे, परमेश्वर कोल है, हर वक्त नेड़े है, अंग संग है, इस तरह जानना है। नेरा विश्राम नेरे ते है, ना ही दूर।

समुचय। बहुत सियाणप जम का पहो ब्यापे अनक जतन कार त्रिसन नाथ रापे। पेख अनेक अगण नहीं बुझय कोट उपाव दरगह नहीं सिजय। छूड़ सनाही उपयाल मोहे ब्यापे माया जाल। अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाय नानक बोले सह सुपाय। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे।

सुहामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कबर न जान सको सर्व धर्म मह।

तव समझय पूरा कहाँ विष्णु पद गावे गोंग जतन कर तव पिहि सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गावन करतार करना में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तर संग सहाई सुहावे न चीत जो बहराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसे अणद केल माया रंग रसे

सावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुहत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के

थे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम धार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी हम बोते आगत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सह निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

ब्रह्मज्ञानी का कथय न जायत अक्षर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंतर पार नानक ब्रह्मज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी का सगले कार ब्रह्मज्ञानी आवनकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनि श्लोक उरतार है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही।

प्रभु सोए कई कोट प्रभु के पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहि समावे अपने जन को सास सास मारे नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहार ने जल थर महियल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई हो खिन महताव था पनहारा तनहि किछ पारंवार

कबहू उपद्रित मह बस कबहू सो गर्ख रंग हस कबहू नेंद चेंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार।

सिद्ध साधक बहु ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग हुए जियान कजौन परमह परमिया नाना रूप ज्यो सुवांगी दिखावे ज्यो प्रभ भाव तिवे नचावे ज्यो तिस भाव सोई होए नानक दूजा वरना कोई

परमान कोट कर्म करे अवतारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फेर फेर अवतार

मिलाए मिलाए। संत का दुखी आद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतरते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की

सोए सब करते केहो करने हार सदा सदा तिस को नाम सकार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याव सास ग्रह सब कछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया।

एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहो जाय। अष्टपदी मानव की टेक मृथि सब जान दे।

संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटहे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बिड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुद की ओ सोधी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्हे निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो त्रिस ना बूझै साध संग

करे। सो सेव कव किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाय, अपने कार्य में आप समाय। सोदित सोदित सोदित सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बुझया, जब देखो तब सब के मूल। नानक सो सूखम सोई अस्थूल, नह किछ जन्मे नह किछ मरे, आपन चलते आप ही करे। आवन जावन दृष्टन दृष्टाग्ञकारी, तारी सब सृष्ट आपे आप, सगल मह आप, अनक जुगत राच थापे उथाप। अविनाशी नाही किज खंड, धारन धार रहे ब्रह्मांड, आपे मेल कृपाल, गुर का शब्द जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करहिं बड़ भागे। नाम

सगल काट सो है तानवंता हुए क्या को गर्भ है जा सब के तिसका दिया दरबे आत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता हवे जे को हुए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर कहो थामे थमन त्यो गुर का शब्द मने अस्थमण

साध की तुहर कर स्नान साधु पर जाइए कुर्बान सा सेवा बड़भागी पाइये सा संग हर कीर तुन गाइये अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस जाखे ओट कही संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पायो मृतक का जीवाल अनुहार भूखे को देवते आधार सर्वन दान जाकी दृष्टि माह पूर्व लिखे का लह न पाहे सब कह तिस काहु करने जोग तिह बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब त्यू निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया।

नाना जाके रंग नाना भेख करहे एक रंग नाना भेद की नो विस्तार प्रभ विनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाई नाना भेद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जाप जाप जीवे नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खान ब्रह्मांड नाम के धारे सिमृत वेद प्राण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे अंगास पाताल नाम के धारे सगले आकार नाम के धारे

सो जन गत पाए। रूप सद जाका सात स्थान, पुरख सात केवल प्रधान, करतूत सात सद जा की बाणी, सात पुरुख समाह समाणी।

हाथ। मान सजतन करत बहु भात, के करत बिरथे जात, मारे राखे वरन कोए, सर्व जियां का राखा सोए, काहे सोज कर हेरे प्राणी, जप नानक रब अलाखे विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत हो मन तन तृपिए, नाम रतन जन गुरुमुख पाया, तिसके शबर नाहीं दृष्टायो।

पाप मिटावे। अबर सियान सगली छाड़ तेह जन की दू सेवा लाग आवन जान हो वही तेरा नानु तेह जन कै पूज सद पैरा सरोक सात पुरुख जिन जानिया सात गुर तिस का नाओ तिस कै संघ सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सात गुर सिह की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिह की गुर दुर्म

पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक आप नहीं कह परम सहस सिहान पलया न जाइये नानक सा गुर बिड भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की धरंगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आतु पदिया ने पूरा गुरु ख्याओ जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख है हुए संत।

होता। जब धारी आपन सं समाध तब बैर विरोध के संग मात, जब इसका वरण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आवरती जानान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभु केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कहो गणी। जब एक

त्याय जय बुगात भगत आप जय पसरे पसार संत प्रताप दुह पाह का आपे तनी उनकी शोभा उन्हु बनी आपे कावत करे अंत जो आपे रस भोगण निर्जोग।

नमस्तं जलाश्रय नमस्तं निराश्रय नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस अजबे आदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं दर्जामे नमस्तं दर्बामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुवर्णमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वंगे नमो काल काले नमस्तस दयाले नमस्तंग भरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत्तबंदे नमस्तंग दृशाके नमस्तंग दृभाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसुखंग नमो सर्वपोखंग नमो सर्वकर्ता नमो सर्वर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपेह अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रवर्ग है सर्ग है नील है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अजूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंत है अबंध है द्रभुज है सूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नैर शरीक है दृलम्ब है असम्भ है अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपरम है अजीत है अभीत है अबाह है अगाह है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अपोकीय भुगते नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवस्तर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो पुपुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमसं सनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच दानं सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा भृतकर्ता अदो उर्दर्दंग अगंग ओग हर्ता परंग परंग परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदीय भेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तत्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभे प्रभु है अजू है आदेश है भेष है भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे आनंदी सुरभे नमो सर्वाने समस्ती निधाने नमास्तमंग निर्नाथे नमास्तमंग परमाते नमास्तमंग अगंजे नमास्तमंग अपंजे नमास्तमंग अगाले नमास्तमंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोखे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बिज्जे अखिज्जे अभिज्जे समस्तंग प्रसज्जे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट शांत त्वप्रसत्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचाल भोगे अचाल राजे अटल साजे अखल सर्वंग अल्लाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांत अथवा प्रसाद आद्रुपनाथ मूर्त अजोर पुरख अपार सर्वांतरमान देव अपेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज अवधूतरुप्रसाद नाम ठामना जात जागर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूर्त अजौन आद अशेख देश और न पेश जागरूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख तामू न जाए सर्वान सर्वतर मान सदैव मानोता है
एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक दे पे बना जाने जे वेद और कतेब रूप रंगना जात पासो जाने के जेब तात मातना जात जाकर जनमन विहीन चकर बकर फिरा चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप आ दे बनाद मूर्त थापे और सबे जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचय स्वयं भव गण पंजनहार कानहीन कला संयुक्त अकार पुरख देश धर्म धाम सो परम रहता भूत लख पे संग्रागना रंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुग्धाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजनाद्रुप असूत अंगहीन अभंगनाथ में एक पुरख पार सर्वलायक सर्वगायक सर्वगो प्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्वयान पे सर्वशास्त्र न जान जरूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाक नेत भागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न अबहुचित मदभार छंद प्रसाद गुणगन उदार मेहमा अपार आसन अभंग अनंग अनुभव प्रकाश निस्तन अनास आजान बाहु शाहन शाह राजान राजभान भान

है सुनत है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं तरानं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देव संग प्राण सर्वं तरानं सर्वं कर्मं सर्वं तरम सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता सावल शांत त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे विभात विभुते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिगामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पोत्र न पुत्र न सत्तर न मित्र न तात न माता न जाता न पाता नृसाकं सरीक मितो अमीक सदैवं प्रवाह अजाह अजाह भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुन चिराग है के कामल करीम है के राज कर हीम है के रोजी दहंद है के राज कर हिंद है करीमल कमाल के सुन जमाल है गरीबल खराज है गरीबल निवाज है हरीफुल शिकन है रासल फिकन है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय कर हीम है समस्तुल जुबाह के साहिब करा है के नरकंग प्रणास है बहसुल वास है के सरबल गवान है मैं सुरमान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अदीस है देसुल लेख है मैसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल अमा है करीमुल कमाल है के जुड़त जुमाल है के अचलंग प्रकाश के मितो सुबास के आज सुरभ के मितो विभूत है के मितो प्रसाह के आत्म प्रभा के अचलंग अनंग के मितो अभंग मत भार शांत तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदा मर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अन भवनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन अभंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस सपंड जल थल महान दिस व्यंत अन भवनाश त्रितर त्रास आ जान बाह एक सदाह ओंकार आद कथनी अनाद खालखंड ख्याल गुरबर काल घर घर प्रणाम चितचर नाम अंश जगात अजना बात अंच अंजगात अंदरंज बात अंटुट भंडारण ठट अपार आ रीर थर मत रीर कर्म अन ब्रन आनंद दाता महंतर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडल है महमंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है गलगारण है सर्ववारण है तृतके तरण है जके करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्पास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा जप है थप थप है कृता कृता मृता मृता मृता मृत है करुणा करता है आकृता करते हैं तरणी तिरत मृतेश्वर है परमेश्वर है कृता करते हैं अमृत अमृत है अजबा करते हैं अमृता अमृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय नरपनायक है सर्पायक है पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंग कीर्तन है सर्वा कीर्तन है कर्ता कर हरता हरे परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राज नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांद्रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो

बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गोर बाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए।

दर्शनीशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा माननी वा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु।

पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मोह कौ राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीरत अमरी रह रास रहाओ हर जिन के बड़ भाग बडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलाय त्रिपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जान नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजमा काहिर मन चित वै उदम जा आहर हर जीव परिया सैल पत्थर में जंतु पाई तां का रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहा जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर से रिज गुस्बाहे ठाकुर काहे मन पाव करिया उड़ उड़ आवै सह कोसा तिस पाछे बचरे चरिया तिन कवन खिलावै कवन चुकावै मन में सिमरन करिया

सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिय नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छेय घर छेय गुर छेय उपदेश गुर गुर एक वेसन एक बाबा जय कर करते कीर्त होय सो कर राख वडाई तोय रहाव विसय चस्या घड़िया पहरा थिति वारी माह होआ सूरज एक रुतन एक नानक करते के किते वेस।

काहे गर्वस मुड़े माया पेत सुतो सगल काल त्रमाता तेरे होय अनंत सखाया रहो बिखे विकार दुष्टो किरखा करे इन तज आत्म होय त्याई जप तप संयम होय जब राखे कमल बिकसै माधा श्रमाई बीस सब ताहरो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सार दस अठारह परम प्रोचिन्ह गाय नानक एव एक तारा

गुरु ज्ञान प्रचंड बलाया ज्ञान अंधेरा जाए मन मुखो मैले मन परे ओ मैं तृष्णा विकारे।

संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया

करो जी अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करने नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

सो अमरी रचया कर बोले सो निहाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

दे वडियाई जिन कोई आप लिख तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावणे माझ महला पंजवा कर पहला अंतरा लख ना जाई लखिया नाम रतन ला गूजा रखिया अगमा गोचर सब ते उचा गुर कै शब्द लिखावणिया हों वारी जियो वारी कल मैं नाम सुनावणिया संत प्यारे साचे तारी वडभागी दर्शन पावणिया रहो साधक सिद्ध जिसे को फिर दे ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे कोर्द तेसे खोजे तांको गुरमिल हिरदे गावणिया आठ पैरे तुद जापे पवना तरती सेवक पाएक चरना खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन भावणिया साचा साहिब गुरमुख जापी पूरे गुर कै शब्द सजापी जिन पिया सही तृप्ता से सच्चे कर अकावणिया जितिस कर सहजा सोई सुहेला नंद बनोद करे सदकेला से तनवंता से बड़साहा जो गुरचरनी मन लावणिया पहला दित

मंत्र कमाए आप तरे सगले कुल तारे इस दरगाह ठाक ना पावणिया तू वड़ उच्चा तू वड़ा तू ऊंचो उच्चा तू बेअंत अतमूचो मूचा हौ कुरबाणी तेरे वंजा नानक दास दसावणिया माझ महला पंजवा कौन सु मुक्ता कौन सु जुगता कौन सु ज्ञानी कौन सु भक्ता कौन सु गिरही कौन उदासी

मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवे न लामणिया रहो तेरा कीता जिस लागे मीठा कट कट पार ब्रह्म जिन जन डीठा खान थनंतर तू है

0: से दिसन नित खड़िया रतन जवेहर लाल हारे कंठ तिना जड़िया नानक बांसे तूर तिन प्रभ सरने दर पड़िया मगर प्रभ आराधना बहुर न जन्मड़िया पोकत खार ना व्यापी कंठ मिलिया हर ना हो मन बेदया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा लसाहो ओट गबिंद गपाल राय सेवा स्वामी लाहो बिखिया पो न सखी मिल साधु गुण गाहो जाते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहो कर गहली नी पार ब्रह्म बौर ना बिछड़िया हो बार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम गाहो शरम पई नारायण नानक दर पिया हो भोख सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे भी परवाहो माघ मंजन संग माघ संग साधुआ तूड़ी कर इनान हर का नाम त्याई सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उतरे मनते जाए गवान काम क्रोध ना मोहिया बिनसे लोभ सुवान
1: सच्चे मस्तद करे जहान अठ सठ तीर्थ सकल पन जी दया प्रवान जिसनू देवे दया कर सोई पुरख सुजान जन्म लिया प्रभु अपना नानक तन करवान माघ सुचे सह कढ़िया जन पूरा गुर मेहरबान फलगुण आनंद अपार जिन्ना हर सज्जन परटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नहीं जाए ऐश कुनी बड़गुणी वर पाया हर राय मेरे सैया मंगल गावी गीत गोविंद अलाए हर जे हाय गवन ना देसी कोई दूजा लवे न लाए फालतू फालतू सवारियां नहचल दितियां न जाए संसार सागर तै रखियां ना बहुन न जन्मे ताए जेह बा अनेक एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फलना नैत सलाइए जिसनू तरना तमाए जन जन नाम ते आया तिन के काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच करे सर्ब सुखा नित चरण हर भौजल बिखम तरे प्रेम भगत नन पाइया विहया नह जरे कूड़ गए दुदा नसी पूर्ण सच करे पार ब्रह्म प्रभ सेव गए मन अंदर हे कुतरे महान दिवस मूर्त पले जिस को नदर करे

जन अपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया सुख पुठे रोग आप कमाया हरखो सोग बजोग उपाय खपाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हाथ नमेड़ झगड़ चुकाया करता करें सहोग हुना चले चलाया श्लोक महला पहला कूड़ बोल मरदार खा है अबरी को समझा फम जाहे मुठा आप हाय साथ है नानक ऐसा अगू जापे महला चौथा जहद अंदर सच है सो सचा नाम मुख सच लाहे ओ हर मार्ग अब चलदा होरा हर मार्ग पाए जे अगै तीर्थ होए तह मल लहे छप्पड़ नाते सगवी मल लाहे तीर्थ पूरा सतगुरु जो आंदन हर हर नाम ध्याए ओ आप छुट्टा कुटुंब सौ दे हर हर नाम सब श्रेष्ठ छुड़ाए जय नानक तस बलिहारन जो आप जपे गुरु नाम चुकाए बौड़ी एक कंध मूल चौन खा है बाणु खंड बासा एक पगमा पेर करें फिर फिरे योगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन।

दल अस्य मुख ले होम अवरद बाजय धुनि कह झूठा कमल करे हो मोहल्ला पहला नाहो नहीं ता क्या खां क्या नहीं क्या होवं कीता करना कहा कथना परिहा पर परदोवं आप न बुझा लोक बुझाही ऐसा है गुरु नानक आंदा हो कहता सिंह राहे सब सुन हाहे साथ है।

चक्कर हो वे खुशी करे नतजियो पार्वत सोना रूपा हो वे हीरे लाल जुड़ाओ की तू है सलाहना आखन लहे नचाओ महला पहला पार अढ़ार हमेवा हो वे गरुड़ा हो सुबाहो चांद सूरज दोए फिर दे रखिए नहचल हो वे थाओ भी तू है सलाहना आखन लहे नचाओ महला पहला जय दह दुख लहिये पाप ग्रह दोहरा हो रात पीणे राजे सरें ऊपर रखिए।

पाला क्या करें, कुसरे क्या करवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तात, बोला ना जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ, धंधा चानन रखिए जीवे बले पचास, चौने सोना पाइए चुन चुन खावे खास, लोहा मारन पाइए टहे ना हुए कपास, नानक मूर्ख के गुण बोले सदा विनाश, महला पहला एहा कच्चन तुंडे सार, अगली गंढ पवे संसार, गोरी छेती तुटे कुंधार, कुत्ती गंढ पवे संसार, राजा मंगे ते गंढ पाहे, भुखिया गंढ पवे ना खाए, काला गंढ नदियां मी चोल, गंढ प्रीति मिठे बोल, वेदा गंढ बोले सब को है, मुहा गंढ ने की सत होए, एत गंढ वरते संसार, मूर्ख गंढ पवे मुँह मार, नानक आखै इहो विचारों, सिफती गंढ पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करें विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखण हार, खरे खजाने पाई गए खोटे छुट गए वह हर वार, खोटे सच ही दरगाह छुट गए एक किस अगे करें पुकार, सातुर पिसे भज पवे एहा करनी सार, सातुर खोट्यों खरे करें शब्द सुवारन हार, सच ही दरगाह मनी।

नानक कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेखम अष्टठ तीर्थ गुर की चरणी पूवे सदा अभिषेक पूजे सदा अभिषेख हंस हेत लोप कोपम चारह नदियां अग पावे तिजे नानका तरिये करमी लग पौड़ी जीव त्याह मार मारना पिछोताइय झूठा इहो संसार कन समझाइए।

मारे दाइयें आपे दे प्यार मम सुन बसाइयें महत के जस्सा बिलम परिये पाइयें गौर साब दे है बोज साचु समाइयें श्लोक महला पहला तुम्ही तुम्मा बैसी आंक तुंदूरा नम पाल मन मख बसे तैस जैस तू चेतना आवि नानक कहिए कैस वडन कर्मा बाहरे महला पहला मात्र फेरू कै

करते बस है जन को रखी तार कौड़ी खसम के दरबार टाटी बसिया सच्चा खसम कुलाम हम कुमर विवासिया खसम पूरा पाए मनोर हसिया दुश्मन कड्डे मार सज्जन रहसिया साचा सतगुर सेव सचा मार्ग दसिया सचा शब्द विचार काल दसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण कै रास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला हदा जम मैं खते करन ता खत्या विचों पाहे धोते मूल न उतरे जे सो धोवन पाए नानक बख्शे बख्शिए तपाही पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छोड़ मंगिए सुख सुख दुख दर कपड़े पहरे जाए मनुख तिथे बोलन हारिए जिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा लेख अंदर पालिया सच्चे परख अलख सरज निहालिया उजड़ भोले राह दुखालिया सतगुर सच्चे बाह सच संभालिया पाया रतन ग्राह दीवा बालिया सच्चे शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया निडरिया डर लग कर से गालिया नाभो फुला जग फिरे बतालिया श्लोक महला तीजा पै बच जमे पै मरे पी पोह मन में खोए नानक पै बच जे मरे सैला हाया सोए महला तीजा पैबन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाहे नानक पैबन जे मरे मुँह काले उठ जाहे पौड़ी सतरुहे दयाल पं शरदा पूरिए सतरुहे दयाल ना कबहू झूरिए सतरुहे दयाल तह दुख ना जानिए सतरुहे दयाल तह हर रंग माणिए सतरुहे दयाल तह जम का डर कहा सतरुहे दयाल तह सद ही सुख देहा सतरुहे दयाल तह नम नित पाइए सतरुहे दयाल तह सच समाइए श्लोक महला पहला सैर गवाह पाइए मल बाणी झूठा मंग माही फिर मुँह लहन पछड़ा पानी देख गुराही एडा भागी सर कुलहना कर हथ सुही माहो प्यो किरत वहन टब्बर लोगन ताही ओ ना पिंड ना पित्तल क्रिया हो मां दीवा मुहे गाहो गाही नट सट तीर सुदेह न टोही ब्राह्मण अंग न खाई सदा कचील रह दिन राति मथे टिके नाही झुंडी पाहे वह नत मर नह दठ दुवान न जाही लके का सह ते फमण गगो पछी जाही ना हो जोगी ना हो संग माह ना हो बाजी मुला गोहे फिरे गुते कला जी मार जवाले सोही अपना कोई रखे दानो ते स्नान भजे बस सोई सरख उथे पानी बिच रतन अपने मेर किया दानी अठ तीर्थ देवी थापे पूर्वी लगे बाणी नह नमाजा माते पूजा नावन सलाप सो जानी मोया जीव दया गत हो गए जान सर पाइए पाणी नानक सर पोते सुधाणी इन्हा गलन पाणी उठे होए होइए खोए बुला बुलो जी जो सो माही उठे कन कुमाद कुबाह सब हे पड़दा हो गए उठे काह चरह नित सुरही सा तन दही बुलो बैंग तत् काय होर जग सद पूजा पाया कार्य सोहे गुर समुंदर नदी सब सिखी नाते जितिया नानक जय सरख नावे नहीं तो सत छिटे सिरसाई महला दूजा गली पाला गे करें सूरज के ही रात चंद हेरा क्या करें पौ पानी क्या जात धरते जी जी क्या करें जिस बिल सब कुछ हो है नानक पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी तद सचै सब हम सदा कल्याण तू सचा जीवान होर कावन जानिया सच जे मंग दान जे से तुद जेहा सच तेरा परमाण सब दे सोया मनिया ग्यान ध्यान तुदे ते पाया कर्म पवे निशान ना चले चलाया।

अग्नबाणी बोले बड़वाहों जह बांगरी एकुस बाहों दृष्ट बुकारी नहीं पाहों आप मारे ता पाहे नौ सब मरे फिर मर न होए बैन मुए का पूरा होए परपंच व्याप रहा मन दोए थरन रैन कहे सो होए बहुत चढ़ो जा आविवार ठाके बहुत दरगा मार सच सलाही तन वर नानक दर कर ओंकार गौड़ी मोहला पहला उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार अमृतार दस द्वार त्रैपन विद्या का मरार रे मन मेरे परम न कीजे मन मन अमृत रस पीजे रहा जन्म जीत मरन मन मान्या आप मुआ मन मन ते जान्या नजर पई कार करते जान्या जत सत तीर्थ

तीन अवस्था कहे बखियाण, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान, हर भगत गुर सेवा तरना वह जन्म होय है मरना रहन। चार पदार्थ कहे सब को ही, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोही, बैन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भक्त हर पाया। जाके हृदय बसिया हर सोही, गुरमुख भक्त प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाहे परमानंद, जन पाया गुर देख दिखाया, आशा मह निराश बुझाया। दीनानाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला। अमृत गाया रहे सखाल ली, बाजी ओ संसारों, लाभ लो मच कूड़ कुमावे, बहुत अटावे भारों। तू गाया मैं हरली देखी, ज्यो तर यू पर जारों, सुन सुन से हमारी सुकृत की तारैसी, जी आड़े मेरे जी आड़े, बहुत न हो बहुत न आवे बारी। तू आखा मेरे काया, तू सुन आख हमारी, नंदा चंदा करे पराही, झूठी लै तुवारी, बेल पराही, जो है जी हड़े करे चोरी बरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही आए, छुट्टुड़ हो नारी, तू काया रैसी सुपनंत्र, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जा कुछ दी लिया, अन्ना मन भला पाया, हालत न सोभा बोलत न टोही, ऐला जन्म गवाया। हाँ खरी दहली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई, ताजी तुरका सोना रूपा, कपड़ के हरे पारा, कैसी ही नाल न चले नानक, चढ़ चढ़ अंगारा। पूजा मेवा मैं सब कुछ आख्या, एक अमृत नाम तुम्हारा, वेद है नियम द्वाल उसारी, पस मंदर की रेरी, सच्चे सच न देही किसी, अंध जाने सब मेरी। सवन हलांका महड़ी, सब पह न केरी, सुन मूर्ख मन अजाना, हो किसे का भाणा रहा। तो हमारा ठाकर पारा, हम तस्के पहुंचा रहे, जियो पिंड सब रास्ते थे की, मार अपे जो वाले, गौड़ी चेती महला पहला। अवर पंच हम हेक जुना, क्यों रखो कर बार मना, मारे लुटह नीत नेत, किसी अगे करी पकार जना।

केते नाग कुली में आहे केते पंख उड़ाए हट पड़न विच मंदर भंडै कर चोरी कर चोरी कर आवै अगों देखे पिछों देखे तुई ते कहां छिपावै तट तीर्थ हम नाभखंड देखे हट पटन मंजारा लैके तकड़ी तोलन लगा घट ही मह मंजारा जेता समुद सागर नीर भरिया तेते युगन हमारे दया करो कुछ मेहर पावो डुब दे पत्र उतारे जी हड़ागन बराबर तपे पीतर गगे गाती पर्वत नानक हुकुम बछाणा सुख वेदन राती गौड़ी बराकन महला पहला रहण गवाई सौ कह दन सुखवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए नाम न जाने राम का मूढ़े फिर पासे भुगताए रे रहो अंता तरन तरनी तरी अनंत न चाह जाहे अनंत को चहन सोह गाहे से आए अनंत गवाए अपन लिया जे मलै तां सब को पाखट होए कर्मा उपन नमेड़े जे लोचे सब कोए नान करना जन किया सोही सार करे हुक्म न जापी खसम का किसे बुलाही दे गौड़ी बरागण महला पहला हरने हवा वन बसा कंत मूल चन खाहूं गुर प्रसादी मेरा खाऊ।

हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवित राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिटी खुद तास, रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान, जाके हृदय वसे भगवान, औखद मंत्र तंत्र

लोभी आनंद करे पेख तना जान चरण कमल सो लागो मना बिसर नहीं तिल दातार नानक के प्रभ प्राण आधार गौड़ी महला पंजमा राम रसायण जो जन गीत चरण कमल प्रेम भगती बीते रहाओ आन रसादि से सब छार नाम बिना निफल संसार अंध कुब दे काढ़े आप गुण गोविंद अचरज प्रताप बण तिन त्रे पवन पूर्ण गोपाल ब्रह्म प्रसार जी संग दयाल कहो नानक सा कथनी सार मान ले।

सहाई दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ आगे आप उथान वस जाकै आठ पैर मन हर को जापै पत प्रवान सच निशान

नसे। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिन को बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम करत शीतल मन भय। मार्ग चलत सकल दुख गए, नाम जुगत मन भय आनंद। रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए। पेटत साध संग गई बिलाय रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्स। तन मस्तक चरण कमल ही पारस। गोविंद की टहल सफल एक आया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दस पाए। आप गया ता आप पै, कृपा निदान की सरनी पै। जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहा को जाया। अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मज्जन कीनो इसनान। लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम। सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु सरन दयाल रहाओ। बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। योग ज्ञान सिद्ध सुख जाने।

कदय नारी बरकस वायलोय रासस देखो देव कयाला सर्वतंत्र प्रीतम बाला कर सेवा में राजन राया सतगुरु मोको एक बजाया एक निरंजन करो जाता दूजा मार छो जाता एको गमावत ते सब लोई एक ते सब बतोई रात हो कदम एको जान गुर के शब्द कम शान सगल रोब वर्णन माई कौ नानक को सौ लाई गौड़ी मल्ला वेला आत्मा कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जाने का चाह ऐसा जोगी जो विचारे पंच मार साच उतारे रहो जिसके अंदर सास आए जो ज्योति की उदवाए राव सास एको ग्रह ज्ञाने करनी की रदा कर्म सुने एक शब्द एक भी क्या मांगे ज्ञान ध्यान जोत सत जागे

चारी राम नारायण गर्भधारी प्रहलाद राधे कृपाधारी बोलो रावण भगत जयदा लूटी लंका सी समेत गर्भ गया व्यंसन गुरेदा सहज भाव मद कीड़ मैं कासा हर नाकस लय नकम दासा दैर सुधारे में नागा पगत व्यासा

एक दिन बोले बहुत पछताने कंस का कंस कैसा झंडो नाई राम जन अपनी कोई मिंज दी न रखे कोई बिनगुर को न मेटा जाए गुरमत

हमें मेरे गोचाव चारे चंचल मत त्यागी पासंगारे अंतर साज सहज करावे राजन जान परमत भावे सच करनी गौर पर निकाय निरभो की कर दौड़ी लावे हाँ कर मरना क्या पावे पूरा गुर बेटे सौ जग जगावे जेती है तेती के नाई गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाई हमें बंधन बंद पाए नानक राम भगत सुभाए गौड़ी मुला वेला प्रभे ब्रह्म का लेकर आया ब्रह्म कवन पया नवाया अज्ञानी लीनी परम लाया जो जेसो काल संगारिया